गुरमुख सतगुरु दे सन्मुख रहण वाले जीवन जिउंदिआं भी प्रवान ने हजूर दी दरगाह विच कबूल ने ते जदों शरीर छड़ जांदे ने ते फिर भी प्रवान ने माता दी कुखों मनुख जन्म लैंदा है पर गुरमुख सत संगत दी कुखों जन्म लैंदा सत संगत दी कुखों जन्म लैके जो गुरु दी दित्ती हुई तरतीब विच गुरु दे दसे हुए नेम विच अपना जीवन बिताउंदा है उस नूं गुरमुख कहिंदे ने जो गुरु दे सन्मुख रहिंदा है जीवन विच भी सुगंधियां वंडदे रहे जीवन विच भी खेड़े वंडदे रहे क्योंकि गुरमुख दी टेक नाम है गुरमुख दा आसरा नाम है गुरमुख परमात्मा दे गुणा दी सुगंधी वंडदा है खुशबो वंडदा है ए गुरमुख दा दान है गुरमुख नाम दे आसरे अपनी मत नूं अपने मन नूं निर्मल रखदा है ए इशनान है गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख ने जीवन विच परमेश्वर दे गुणा दी सुगंधी वंडी नाम दी टेक रख कोई समासी किसी पासों सुगंधी आ रही सी किसी ने आके पूछया तेरे पासों सुगंधी आ रही बड़ी महक है तेरे कोल की वस्तु है जिस वस्तु करके सुगंधी आ रही जिस पासों सुगंधी आ रही सी उसने कहा मेरे पास गुलाब दा फूल है उसने गुलाब दा फूल दिखाया वेखण वाले ने वेखे

बंसरी बजदी, बजाउण वाला बंसरी बजाउंदा, वजाई जांदी, बंसरी वजी जांदी, वजाउण वाला वजाई जा रहा है, वजाउण वाले नूं वजाउंदिया वजाउंदिया ना सा खाण दी भुख, ना कोई प्यास दिखाई देंदी, ना पता चलता इसने आराम भी करना। बंसरी वजदी जा रही, वजाउण वाला वजाई जा रहा, पर इउं लगदा हुण तां बंसरी वजाउण वाले नूं वजाउण लग पई। तो सतनाम श्री, वजाउण वाला बंसरी विच ही गवाच गया, वाजा वजाउण वाला वाजा वजाउंदा सी, वजाउंदिआं वजाउंदिआं उह लग्गिआ हुण तां वाजा वजाउण वाले नूं वजाउण लग पिआ। वजाउण वाला गवाच गया, कोई शब्द का अभ्यास करता सी, गुरु दे दित्ते गुरमंत्र का अभ्यास करता सी, कोई गुरु दे दित्ते हुए शब्द का अभ्यास करता सी, करदा ही गया करदा ही गया करदा ही गया, इउं लग्या हुण तां शब्द अभ्यासी नूं अभ्यास कराउण लग पिया। जब सतनाम श्री वाई, वह अभ्यास करन वाला गुर शब्द विच ही गवाच गया, समा गया, अभ्यास करन वाला जीरो बन गया। अभ्यास करन वाले दी मैं मर गई, जिस दी मैं मर जाए वह तां कदे नहीं मरदा। ते पु सतनाम श्री, मरदे ओह ने जिन्हां दी जीवन विच मैं नहीं मरी, ओह तां जीउंदा ही मर जांदे। ते जिन्हां ने जीवन विच गुर शब्द दा अभ्यास करके, जिन्हां दे जीवन शब्द ने अभ्यासी नूं अभ्यास ते लगा के उन्हां दी मैं मार दित्ती, ओह मुड़ के कदे नहीं मरे। शब्द मरो फिर जीव सद ही बहुर मरन ना कोई। अज सतगुरु ओही गल कह रहे, जेड़े गुरु दे शब्द विच समा गए उन्हां नूं मरिया होया ना आखना। जब सतनाम श्री, कदे भुल के भी किसे गुरमुख नूं ना कहना कि गुरमुख मर गया। मरदे ने मनमुख, जपो सतनाम श्री वाहिगुरु, गुरमुख नहीं मरदे। मरदे ने शरीर, गुरमुख नहीं मरदे। जपो सतनाम श्री, गुरमुख नहीं मरदे।

आई हुई हवा उन्हां पत्तियां दा झुलना भी डराउंदा है। हो सकदा है उन्हां नूं फुल भी लगदे हों बूटियां, पर कोई सुंघ नहीं जांदा। सो सतनाम श्री, पर कदे किसे बगीचे च जाके देखो जिन्हां नूं माली सिंजदा है, जिन्हां ते माली दी नजर है, पत्ते पत्ते ते डाली डाली दी माली नूं खबर है। उन्हां च लोकी सैर करन जांदे ने बगीचियां, आनंद लैण जांदे, उन्हां दे खेड़े देखण जांदे ने, सुगंधियां सुंघण जांदे ने, क्योंकि वह तरतीब विच ने, माली दी दित्ती हुई तरतीब च रहिंदे ने। मनमुख

इस गरीबणी दे घर आप चल के आ गया। तन है तू मां दे मुंह चो निकल रहा है। मां वो कौन सी तू जानदी है इस नूं? मां ने छाती नाल लाया पुत्र नूं, बैराग विच भिज के आखिया, पुत्र रहमतां दे मजस्मे तन गुरु अर्जन दे पातशाह आप तेरे मुख विच जल पा के गए ने, तेनू दोबारा जान दे

जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ये कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारिया नू बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी धन गुरु नानक साहब जी पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करें।

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानकसर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी सार संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुनणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियों समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीआं लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आं भई संत चले गए।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले। पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे चाथी पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा, कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे। जेड़े बंदगी वाले महापुरुष सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उह अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण, पहला निर्धन नूं पालना, गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के लावे, लाउणा किथे, किसे गुरुद्वारे दी कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा है।

अज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ अज राय बुलार अरदास पिया करदा है आओ जिसने धरती नु पुटिया ओनु पानी जरूर मिलिया जिसने खोजिया ओनु मालिक लब्भा है जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए सारी आओ प्यारी साध संगत अज दा समा ए रात खास बख्शिश वाली है की पता हो जाए बख्शिश कोई वड्डी गल नहीं तो आओ तरला तो करो उद्दम तो करो ओ केड़ा उद्दम है अपने मालिक अगे अरदास सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नु बख्शी है अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़ जाना है राय बुलार रो

पिता जी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे निरंकारी वीर नु कुछ ना कहो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सर जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दियां पुब्बा निकली। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नूं की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नूं मुखातब होके कहंदा की

अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहा है सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटपाउंदा आखो श्री वाहिगुरु मरदाने हुण बोली ना बेवे नानकी दी आस पूर्ण करनी हजूर आए अगौली आके बेबे नानकी दी हथां तों मक्खण चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सुरत कन्ना विच लै के ए आवाज तो मेरे वीरन दी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हथ बेबे दा सिर अपने हथा ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सी रोक पई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन सगनू संत बनाया है वली कन्हारी दा मान तोड़िया है पत्थर पंजे लगा के मोम करन वालिया तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नू मिले हो कि नहीं बेबे पहला तेरे कोल आया मां नू भी मिलो हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुध पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गनुंगड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखो श्री भाई नेत्र खुल गया अज माता तृप्ता नू 12 साल दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखो श्री भाई गुरु मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलिया वाली गंढ लियांदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्तर नू एक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो श्री भाई वेख वेख वेख करदी है ते कहंदी है नानक हुण ना बार जाई नानक जी अम्मी पिता नू भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नू भी मिल तेरे प्यार दीवाने होए फिरदे हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार की थी ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक आज मेरी अखा खुल गई मेरे अगे मथा न टेक मैं कलयुगी जी बंदा गंदा हां तू रब्बी नूर ना पिता जी मर्यादा रखनी कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नू मिले हो के नहीं पिता जी फिर राय बुलार नू मिले हजूर सुर पे अज सारियां नू दर्शन देंदे देंदे जिस वेले राय बुलार कोल आए राय बुलार रो रहा है ते पे कहंदा है कि सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जप नाम दे सदके नाम ही मिल जाएगा तो आओ प्यारी साथ संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजी लगवा रहा है ते इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े ते प्यार है एक वेरी वड्डे बाबा जी दिल्ली दियां संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू राजेंद्र नगर है इथे पहला खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां रसले जंगल ही जंगल सी बाबा जी ने इथे बख्श कीती पर जिहड़े आशिक सन ओह रोज पहुंचदे सन प्यारी साध संगत पटियाले दे रहण वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तों दिल्ली दर्शन करन वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मत दे सक उन्हां कोल ठहरे अमृत वेले बाबा जी दे दर्शन करन वास्ते जाण लगे
تو رائے باد نرائن سنگھ جی کہنے لگے ہرچند سنگھ اسی بھی نال چلیں گے جی سد کے چلو جی کار اچ بیٹھے آ گئے اگے کیرتن ہو رہا ہے امرت ویلے آسا جی کی وارتا تو بابا جی دھرتی پٹ کے نیوے بہندے سن براگن لگائی ہے ہن بھی کر لو درشن براگن لگا کے مستی جھوم رہے ہیں تے پیاری سات سنگت بارش شروع ہو گئی سائبان نہیں سی کوئی اتنے چھت نہیں سی باہر ہی دیوان سجیا ہوا سی تو بابا جی نے اشارہ کیتا بھائی کیرتن کرن والے اتنے کپڑے تان دے تان دیتے تے بابا جی نے راگی سنگھ نو کہا اے تو کام پڑھو کہڑیاں آپاں بھی پڑھ لئیے

फिर कुछ मंगन दी लोड़ नहीं रही। ओ दाता वंडन वाले हो गए जिन्हां ने दातार नू मंग लिया। नौ प्रकार दी भगती दसी है और सारिया भगतियां विचों उत्तम भगती है कलयुग दे विच। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जाग दी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि भगतियां विचों प्रधान भगती है। जपा सिर जप है, तपा सिर तप है, कर्मन सिर कर्म है। जो सत संगत विच बह के कीर्तन दी समाधि ला के जपना श्री वाहिगुरु उत्तम भगती है। कीर्तन दी भगती आख्या जिन्हां ने कीर्तन विच समाधि जोड़ ली मन जोड़ लिया वो आप ही नहीं तरे। आप तरे सगले कुल तारे सारियां कुला उन्हां दियां तर गईयां। हर दरगह पत स्यों जाएंदा संसार विच भी उन्हां दी जय जयकार ते दरगाह विच भी फिर रेरे दरगह कहे ना को। आओ बैठ आदर सब देव वो आदरणीय हो गए भाई जिन्हां ने गुरु को नो सिफत सल

जिन गुरु पूरा मिल गया। संत अत्तर सिंह मस्तवाणे वाले बैठे सी जवान च, कोई शख्स कुछ बोल के हटिया,